0: कॉल करो 647-504-1557।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: ਜੇਐਸ ਹੋਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ $500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ $350 ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰਸ $349.99 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇਐਸ ਹੋਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਬਿਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 905 7

0: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर, टेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीडीए दे विच चार लोकेशन ने। मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेटन एवेन्यू, ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल दाले सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहैम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नूं कॉन्टैक्ट करो। तुहाडे कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, तुहाडा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कॉन्टैक्ट लई नंबर है 647-292-5557-57 647-292-5757।
7: असी करदे हां फिकर, तुसी रहो बेफिकर, तुसी जियो बेफिकर।
8: की गल भाई जी, एने बेफिकर तो तुसी मेनू कदे नजर नहीं आए, राज की है? बेफिकर होण दा ए राज मेनू दिता है जसविंदर कौर तग्गर दी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने। साडी लाइफ इंश्योरेंस, ट्रक ड्राइवर्स लई डिसेबिलिटी ते क्रिटिकल इलनेस दे चंगे प्लान्स, साडे पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस ते बच्चा लई RESP। तुसी भी रहो बेफिकर ते कॉल करो जसविंदर कौर तग्गर नूं 647-765-2340-647-765-2340।
9: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on करो स्ट्रीम Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

0: ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰਮ ਟਾਕ ਟ੍ਰੇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੇਵ ਟੂਡੇ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਰ ਫੋਨਸ, ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ, ਮੋਰ ਚੋਇਸ।
2: A1 cakes and pastries 1997 to thodi seva karda aa reha hai. Cakes, pastries, mithaiyan, samosas te party decoration bhi lai sakde ho. Nakal karke cakes ate pastries bechan walyan to bacho te Jaspal Nagra nu phone karo.
3: A to Z kitchen cabinet, bhai wah, kya kitchen cabinet taiyar karde han. Lucky bhaji diyan baniyan kitchen cabinet dekhe guanti vi bohane naal tuhade ghare aunde han. Sheeshe naal bhariyan kitchen cabinet waste, designer kitchen cabinet waste, A to Z kitchen cabinet, 416-720-7073, 905-720-7073 de call kar sakde ho.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
4: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
6: मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
7: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
8: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट इन पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फैदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
9: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
3: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब, अफीम, पोस्त, डोडिया के नशे तो दूर कर देते हैं डॉक्टर कुमार। लेडीज के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार। हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार, 416-425-0138, ग्रेटर पंजाब प्लाजा, मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार, 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।
10: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: मस्कोका अंदर डेढ़ एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। थ्री बेडरूम, टू एंड हाफ वॉशरूम हैं। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। दो साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
2: 32, 55, 80, 98, 80 हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828 अठाई अठाई

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं।
2: हैं फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
8: Free emission tester, new the used tire power, rust proof in the cam, oil change, brake job, transmission, engine the koi become hove. Aji apne car nu leke aao, Highway 50 te Mayfield de nede, number 91 Haley Road, or Home Depot de naal, aji call karo Praminder Singh aur annu, 905-857-7596, A&J Auto Repair, jede ke Bolton ate Brampton de border te ne.

0: मनप्रीत बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त एक बार फिर सब नो जी आनो जी ने का स्वागत और असी आज ग्रैंड फर्नीचर तो थानो जबरदस्त डीलर दवा रहे हैं क्योंकि ग्रैंड फर्नीचर जड़ी सेल चल रही है कैनेडा डे नु समर्पित कैनेडा डे दी जन्मदिन दी खुशी दे विच दिल खोल के प्राइस दी जा रही ने डिस्काउंटेड प्राइस ने सारिया प्लस गिफ्ट कार्ड भी दिए जा रहे ने सुखोरी मेरे नाल ने हुण देखदे आ सुखोरी कीड़ी डील देंगे
1: बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर बिल्कुल कैनेडा डे स्पेशल सेल जिहड़ी चल रही आ साल दी सब तो घट कीमतां च परिवारां नूं फर्नीचर दे उपर मिल रही ते नाल दी नाल वड्डे वड्डे तोहफे जिहड़े तुसीं अपने घर अपलायंस दे विच लैके जा रहे हो तोहफे ते नाल लोएस्ट प्राइस पूरे साल दीआं घट कीमतां दे तों उपर तुसीं फर्नीचर इस वीकेंड उपर अपने घर लैके जा सकदे हो फ्राइडे से जिहड़े संडे कोई भी फर्नीचर दी बाइंग करनी आ बेडरूम सैट सोफा सैट डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल तां कैनेडा डे स्पेशल लोएस्ट प्राइस ते नाल तोहफे अपने घर लैके जा सकदे सुत साहब
2: ग्रैंड ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6472620000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

ठीक है, न्यू फर्नेस, न्यू एसी, 905-790-90-80। तेजपाल भाजी नूं कॉल करो, ग्लोबल कंफर्ट एयर, 905-790-9080, 905-790-9080। ते मल्ली टेंट सर्विसेज, तुसी अगर टेंट लगवाना किसी भी ब्याह शादी के फंक्शन लई, छोटे तो लैके वड्डे साइज के टेंट, टेबल, चेयरां, डांस फ्लोर, बार, स्टेज, मल्ली टेंट वाले कोल सारा कुछ है। 647-999-2569, 647-999-2569, मल्ली टेंट।